0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: कोहे तूर पर गूंजती मूसा की ये सदा है, जो हर शय में नजर आए बस वो ही खुदा है।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
7: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
10: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
11: इंट्रेसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
12: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
13: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
8: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
15: MCB One Current Account, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB One Current Account खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB Bank for Life।
16: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
17: शरायत जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC. And
8: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: And
12: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat.
2: हायर
16: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
15: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ
13: एंड

0: 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
2: Higher ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC. And
2: Higher Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries.
0: And
1: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: And
6: MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: And

0: एजीएस ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: कूल किंग,
3: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
6: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
7: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
8: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
9: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
9: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
12: MCB1 current account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
8: शराय तो जवाबित लागू है।
13: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
9: and Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
6: and Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
7: And अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
12: And MCB बैंक
14: for life. And

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप लाख को से तीन बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King. Chai hotel pe baithe ho. Chai garam, mausam garam. Aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
3: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMad subscription bhi with free installation 144Hz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month free replacement ke saath aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye Higher more creation more possibilities
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
6: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात ढाई हजार
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
8: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग No Frost No Worries
11: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
10: Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No frost, no worries.
7: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया? तो टेंशन कैसी? मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
12: शरायत और ज़वाबित लागू हैं
13: एमसीबी वन करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में जैसे कि फ्री चेकबुक फ्री बैंकर्स चेक फ्री एसएमएस अलर्ट्स फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: एजीएस ट्यूबलर दिखाए काम एजीएस ट्यूबलर बैटरी दिल को है आराम
2: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी
10: And Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: And
5: Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat
14: हायर।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
15: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: एंड
16: तूफान है हर जीत की पहचान है।
7: एंड
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: एंड
3: आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
18: FM 24/7/365
19: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
20: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
21: It's 24 hours, non-stop vibration. Connecting you.
22: Connecting.
21: Holding you.
22: Holding.
21: With FM 100.
23: FM 100.
24: FM 100.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC, and
2: Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving. No Frost, No Worries,
0: and
1: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
6: MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: एंड
7: तूफान है, हर जीत की पहचान है.
0: एंड
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
9: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365 100 FM.
10: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: कूल किंग। बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz. Ek duni
8: do, duni chaar, sahi intikhab ke inamat 2,500.
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
10: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो क्रॉस, नो वरीज।
11: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
12: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
13: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
14: शराय तो जवाबित लागू है।
15: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
6: and Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
1: and Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
9: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
12: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
16: एंड तूफान है, हर जीत की पहचान है।
15: and
16: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
15: And
4: aaj hi hire mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
15: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Higher ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान.

0: भरनी होगी,
1: जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइज जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: AGS ट्यूबलेट, लिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम,
7: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: And हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: And हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
3: And अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
9: And MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: जा
1: एंड आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
2: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
2: And Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
0: And
3: Hire Ka Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries.
0: And
4: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
6: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा
1: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by Aji, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
5: back to back only music no RJ talk only music no RJ talk this is

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: 100 FM
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by
4: Aji Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखा दही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
4: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM 100.
6: Come on.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

honking. चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
5: Back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: It's 1:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: FM 100 पर आप सुन रहे हैं जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।
1: जैफ कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैफ कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
6: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365
0: FM247365। आप सुन रहे हैं FM 100 पर जुमतुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफ्सियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365.
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: डंकिंग।
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
5: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
6: And अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
5: And
7: MCB Bank for Life.
5: And

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: MCB 1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB 1 current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.
3: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC ultra big outdoor ke saath, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular Battery दिल को है आराम.
5: And Cool King Hair Oil जैसे चलता फिरता AC.
6: And आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए.
7: एंड अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
8: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ.
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
10: हमने आप लाख को से 3 बार मौत देखी.
11: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूं कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
12: फिर उन्होंने साडी वीडियो बनाई, सानू मारिया, सानू कुटिया.
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
14: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
15: Only music, no RJ talk.
14: This is FM 100.
16: Come on.

0: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
7: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500.
10: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात.
9: एक दुनी दो दो दुनी चार दुनी दो दो दुनी चार.
11: इंट्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
12: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
8: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
13: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी. जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
14: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
10: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
11: शराइत जवाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
5: And Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
6: And aaj hi Hire Mini LED TV line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
10: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
5: एंड

0: बड़ा आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग,
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
7: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
9: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
11: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
12: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
1: शराय तो जवाबित लागू है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, AGS ट्यूबलेट बैटरी दिल को है आराम,
4: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी,
5: एंड आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
0: एंड अगर आप है इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
5: एंड

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
6: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
9: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
10: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
6: एंड अगर आप है इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
0: एंड

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And
3: Archie. Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
0: एंड
4: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड

0: and
1: hired T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Hire.
2: Cool King.
3: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
4: तुम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
6: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
2: कूल किंग.
5: चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Hire Hino Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
0: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: This program is brought to you by
8: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai
5: and Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
9: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें, अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अपराध के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
10: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
11: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
12: FM247365
13: Let's celebrate
14: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
15: Evening drive time.

0: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना।
1: शराइत तो जवाबित लागू है।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: तूफान है, हर जीत की पहचान है,
2: एंड
4: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट, हायर।
5: नशा अपनी परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी
6: खूंगी जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस मैयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: 100 FM.
4: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: शराइत तो जवाबित लागू है।
6: This program is brought to you by
7: Higher ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100.
8: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
9: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
10: here and there is only 100 FM.

0: तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM. Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: 100 FM.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Two Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
8: FM 247 365.
9: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے۔
10: Evening drive time.

जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। गला भी थोड़ा सा तरह साथ आज नहीं दे रहा, मौसम ऐसा ना कभी, और ठंडी चीजें हम ज्यादा खा पी रहे जिसकी वजह से गला जो है खराब। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नदीम अंसारी हमारे प्यार से, गले का बता रहा था तो बहरहाल जनाब। अच्छा जी, महाजबीन हमें सुन रही हैं इस्लामाबाद से, तबीयत सही भाई? महाजबीन बस अच्छे डॉक्टर को दिखाओ यार, क्या चक्कर है भाई? कह रहे किसी की नजर लग गई है, तुम्हारी अपनी नजर मुझे लगा कि लग रही है। आमिर सलीम का गाना पसंद आ गया, इसके अलावा जे जे के गाने बिल्कुल होते हैं भाई, पूरी क्यू शीट उन्होंने भेज दी है, बस आप भेज दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इन्हीं में से कुछ गाने लगा लूंगा। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे गिजरी से, अयाज भाई आपको सलाम, सुंबल जी को भी और कादिर भाई को, एफएम के तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? बेहतरीन हाल है, आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से हमें सुन रहे हैं, गयास कैसे हो मेरे भाई? तारों भरी रातें, इनको गाना पसंद आ गया भाई। आमिर सलीम जो है ना कमाल गाने गा के चले गए। अच्छा जनाब, और संजीदा क्या कह रही भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरे हरदिल अजीज शहजादे आ गए, हाय, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करती है भैया, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शहजादा, कल का शो में जिस तरह अस्मा को महसूस नहीं होने दिया कि वो पहली बार, अरे वो खुद इतनी अच्छी आरजे हैं, बल्कि मुझे मैं बड़ा कंफर्ट फील कर रहा था। होते ना गेस्ट आते तो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन आरजे के आने से ये फायदा हो जाता है आप सुकून में रहते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत ही टैलेंटेड है वो। और इसके अलावा भाई वो तारीफें कर रही भाई, ऐसा नहीं, वो खुद इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह। और वो कह रही भाई अस्मा स्टूडियो की बहुत तारीफ करी थी, माइक हर चीज, भाई ऐसी बात नहीं है, हर चीज ही जबरदस्त है। इसका मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है ना दिमाग, हम कहते हैं और अच्छा होना चाहिए, बल्कि ये तो होना भी चाहिए। सब तारों भरी साथ ये गाना इनको भी पसंद आ गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अस्मा जी का जिक्र किया और वो भी आ गई, अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी सुन रही हूँ। अस्मा जी क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है। और भाभी युसरा, युसरा भी सुन रही हैं, भतीजी उम्मे रुमान भी, इराकी नाम रखा फुल टाइम, मुश्किल ताकि बोल ना सके। कल बहुत अच्छा लगा आपके शो में, सेम यार जनाब, हमें भी बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आप इतना अच्छा बोल रही थी। अच्छा भाई, गयासुद्दीन बलबन के भी मैसेज आ रहे हैं लेकिन इस ट्रैक के बाद। और महाजबीन ने कहा कि भाई जे यानी जुनेद जमशेद के गाने भी रखे, तो बिल्कुल बन जनाब, हमारी क्यू शीट में जुनेद जमशेद के गाने होते हैं, और स्पेशली ये ट्रैक आप ही को डेडिकेट कर देता हूं।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: कूल किंग,
3: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: शराय तो जवाबित लागू है।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365
10: Active, yummy, adorable, zabardast. Say that guy crush on you. Ek liye pyaar to suno yaar.

भाई जना वेलकम बैक सुन रहे FM 100 और साथ साथ मैसेजेस के चाहे स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। यूके से नादिया मलिक भी आ गई। नादिया क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं और कह रही है क्या बात है। जुनेद जमशेद ऑल टाइम फेवरेट भाई, वो तो है ही। 90s की बात हो और जुनेद भाई के गाने ना ऐसे कैसे सुन। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलमन कह रहे हैं यार अगर गले में कोई मसला तो मैं आके दबा देता हूँ। नहीं करो यार गयास, ऐसे नहीं करो भैया। अच्छा जनाब, और बिलावल क्या कह रहे हैं? सर मैं महाजबीन को कहें डॉक्टर चेंज कर लें। मैंने तो काफी दिनों से मशवरा दिया, अब पता नहीं महाजबीन हमारे मशवरे पे अमल करती हैं कि नहीं करती। जरी नूर का भी मैसेज आ गया। सलाम, कैसे हैं? सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल मजे में हैं, ठीक ठाक हैं। गाने पुराने में आपको सुना रहा हूं। पुराने से मुराद वो पॉप सीन जो पुराना है 90s का। सच बताऊं तो आज भी इन गानों को सुनते हैं ना, बहुत ही मजा। इस जैसे बैंड, इस जैसे गाने जो है ना, अभी भी नहीं आ पा रहे। राइट जनाब, एक आवाज बैंड यकीनन याद होगा आपको, हारून और फाखर का जबरदस्त है ये बैंड। इनका ये खूबसूरत सा ट्रैक, और वो है कैसे,

हाय हाय, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। और हमारे रिपोर्टर आए हैं और उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया है और अपडेट किया है अजमल शोभी भाई ने कि भाई बारिश हल्की हल्की हो रही है। भैया सर क्या कहने, शोभी भाई दिख रहे भीगे भीगे आ रहे हैं। बंदा का भीगा होना और खातून का भीगा होना, जमीन आसमान का फर्क। ऐसी मैं कह रहा हूं। अच्छा जी, इसके अलावा कादिर बख्श बलोच भी आ गए। कादिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अयाज भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? बिलावल भाई और संजू को सॉन्ग डेडिकेट। भाई नेक्स्ट गाना तो बारिश का भाई ने फौरन तैयार कर लिया, मौका चाहिए बारिश का गाना प्ले करने के लिए। तो हमारे इलाके में तो हो रही है भैया, आप अपने इलाके का बताएं भाई, क्या सूरत हाल है? बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, इतनी ऐसी कोई तूफानी बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत है। तो जरा अपने इलाके की सूरत हाल बताएं। अच्छा भाई, और माँ जमीन कुछ कह रही है डॉक्टर के हवाले से, और वो कह रही कि डॉक्टर चेंज किया है, पता नहीं क्या हो गया। बाकी सही बात है, नजर लगी कि अब किसी बाबे को भी दिखाएं नहीं, लेकिन बाबे ना दिखे, पता चला बाबे को कुछ देख रहा होगा, बाबा कितने। अब कोई ये ना लाइफ पार्टनर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे होता है अक्सर बाबों के पास चले जाते हैं, वो नहीं करना माँ जमीन, वो बिल्कुल काम नहीं करना। अच्छा जी, घर चेंज, हाँ घर चेंज वाला भी बात है। वैसे बस घर जो है ना सूट नहीं करते, इसमें बात है। चले जनाब, अभी फिलहाल तो मैं जो ट्रैक प्ले करने वाला हूँ वो है बारिश का, और गाने का नाम भी बारिश ही है, और इसे गाया है अली हैदर साहब ने।

जनाब, और साथ साथ जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे गाने जो कभी बहुत ही कम प्ले हो रहे होते हैं वो मैं जो है वो शामिल करूँ। तो शामिल करते हैं जनाब उस्ताद नुसरत फतेह अली साहब को। ये भी कमाल सिंगर है, इनका इनकी मैं क्या तारीफ करूँ। वाह वाह वाह वाह वाह, 90s में ये ट्रैक भी सुपर डुपर हिट।

0: या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर है। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
1: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू है।
3: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
4: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
5: एक्टिव यमी। प्यार तो सुनो यार।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
3: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो चाय गरम मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम पॉलिटिक्स

हां जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा भैया मुश्किलें आ गई हैं और नाइस शो हमेशा की तरह और अस्मा के साथ जो शो किया था चिट चैट जबरदस्ती बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया मुश्किलें जी। अस्मा जी तो हिट है भैया। अच्छा जनाब हिट की बात करें तो नवेद भाई भी हमें सुने। नवेद भाई कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत से हैं? दोस्त आए हुए हैं इनके दोस्तों को कोई तरह दोस्तों के नाम ले लूं पहले। अजमी भाई हमें सुन रहे हैं। एम अजमी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं खैरियत से हैं? वजाद साहब आप बताएं तबीयत सही? दोस्त आए हुए कुल्फी खिलाओ इनको गर्मी बहुत है जूस पिला दो इनको। ऐसा नहीं हो खाली तुम चक्कर देते हो इधर से उधर। नवेद भाई कंजूसी तरह कम रखो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूक। वालेकुम अस्सलाम। और भाई ये जो कवाली है पसंद आ गई बहुत सारे दोस्तों को और इतनी सारी दुआएं। और आप क्यों सॉरी क्यों कह रही भाई देर से मैसेज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जनाब अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं याद भाई गुलबानों के नाम सूफिया कैफ का कोई सॉन्ग प्ले। सर आज 90s के गाने ना सूफिया पहले तो मुझे ये दसो सूफिया है कौन पहले तो इसको ढूंढेंगे ना। अच्छा उमर कह रहे हैं आपका शो बहुत अच्छा होता है एक सॉन्ग बुशरा को डेडिकेट कर दें शुक्रिया। चले जनाब बुशरा जी को कौन सा गाना मैं डेडिकेट करूं ये वाला कर देता हूं। चले जी सज्जाद अली का ये खूबसूरत सा ट्रैक। मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर।

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: भाई जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और क्यू शीट इतनी जबरदस्त बनी हुई है। सोच रहा हूँ थोड़े थोड़े गाने दो दो मिनट के लगा के और ज्यादा से ज्यादा गाने शामिल करूं, क्योंकि वैसे तो सुने हुए होते हैं ये गाने, लेकिन ये कि बहुत दिनों बाद सुनो तो अच्छा भी लगता है, ये वाली बात भी है, वरना दो ढाई मिनट के गाने के बाद फिर बंदा दूसरा चेंज कर ले। अच्छा जी, अय्यूब आफरीदी कह रहे हैं, भाई सूफिया कैफ जबरदस्त सिंगर है। हाँ, नो डाउट आप कह रहे हैं तो बेहतरीन सिंगर होंगे, लेकिन आज क्योंकि जरा वो 90s के ना और पुराने गाने में लगाओ, इस वजह से नेक्स्ट वाले गाने में मैं जरूर नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको ये गाना डेडिकेट कर देंगे। अच्छा जी, महानूर कह रहे हैं, भाई आपको अबू आफरीदी भाई को और मुश्क को सलाम। नाइस, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी महानूर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सॉन्ग्स अच्छे हैं सारे आपके शो के, आपकी शो की बात ही अलग है। सुपर जरीन नूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इतनी तारीफें करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, और मिसेस फारूक कह रही है, भाई उनके इलाके में भी हल्का हल्का जरा बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही। मिसेस फारूक ख्याल रखना है आपने अपना, सेहत का भी। अच्छा जनाब, बुलबुल गाना संजीदा कह रही, ये भी बहुत मशहूर था, थैंक यू आपने बताया संजीदा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया। और मुझे लग रहा है कि ये वाकई शो का वक्त जल्दी गुजर रहा है, मैं देख लें आप, सवा घंटा गुजर ही गया तकरीबन। अच्छा जनाब, पेट्रोल की बातें हो रही, भाई फुल टाइम टिका के मैंने सुना है 74 रुपीज मेरा ख्याल से कम कर दिया था। चलो यार, जो अच्छी बात हो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा लेट उन्होंने कम किया है अच्छी तरह से जो है ना अवाम का बेड़ा गर्क किया, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ अच्छा काम किया है, थोड़ा और भी कम कर ले यार, 250 के करीब करीब भी ले आए जरा, उससे थोड़ा जरा समझ रहे। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा 200 हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, कुछ लोग तो कह रहे हैं फ्री में ही दे दो तो अच्छा है। हम लोग है ना पाकिस्तानी, फुल टाइम फ्री हो जाते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। और यार एक गाना मुझे याद आ रहा है, जुपिटर्स, पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते थे उनके, और उसमें उस बैंड में तमाम ही सिंगर, अली अजमत से लेके जवाद से लेके और पता नहीं दो चार ऐसे, इनके नाम भी मुझे नहीं पता वो भी थे, और इनका ये एक जो ट्रैक था ना बड़ा जबरदस्त था, हिट भी हुआ था उस दौर में, ये थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको।

0: Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: Active, yummy,
7: adorable,
8: zabardast.
9: तो सुनो यार।

जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं और थोड़े से लोग जो है जरा खुश भी नजर आ रहे हैं कि शुक्र है कि पेट्रोल थोड़ा कम हुआ है। अच्छा फेसबुक पे मैं देख रहा था कुछ तो इतने हो, तारीख की कमी 250 कम होगी तो होगी, वैसे हम पॉजिटिव रहते हैं, ये भी अच्छा है यार, कहां 400 से भी ऊपर ले गए थे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए आम आवाम के लिए ताकि, और सबसे अहम बात ये बाकी जो चीजें महंगी हो गई पेट्रोल की वजह से अब वो क्या कम होती है कि नहीं, ये भी तो है ना, हम लोग ये भी तो इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है। अब किराए जो बढ़े हैं क्या वो कम होंगे, खाने पीने की चीजें जो पेट्रोल की वजह से बनी थी क्या वो कम होंगी, इस पर नजर रखनी है भैया। अच्छा जनाब बिलावल कह रहे हैं सर अच्छे की उम्मीद रखनी, भाई हम तो पॉजिटिव लोग हैं हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये कि बताते रहते हैं इतना भी कुछ नहीं हो, अभी और अच्छा होना है, गुंजाइश है अभी। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आई एम गुलाम नबी सुमरो फ्रॉम लारकाना, सुमरो चाला बाबा ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है, अल्लाह पाक और भी कामयाबी दे, आमीन बाबा सुमा आमीन। मेरे साथ आपको सुन रहे हैं मामू इकबाल, मामू अदा मामू चाला मामू ठीक हो, इकबाल रमजान एजाज और मेरी तरफ से सारे सुनने वालों को सलाम बाबा, वालेकुम सलाम। प्लेलिस्ट सर प्लेलिस्ट ऑसम है। अच्छा जी न्याज बहादुर, न्याज भाई कैसे हैं आप? अयाज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम, मेरी तरफ से अयूब भाई को और मानूर को भी सलाम। एक पश्तो गाना बाबा, पश्तो गाना हमारे पास नहीं है, हमारे शहजाद रॉय का एक गाना है वो बहुत ही आला है, वो मैं आपको सुनाता हूँ।

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100। और जनाब फैसलाबाद से हमें नौरीन तौसीफ, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डिनर भी कर लिया है आराम सुकून के साथ और कुछ भी हो रही है कि पेट्रोल कम हो गया है। कल का शो का कह रही लाजवाब था। और संजू बहना, अयूब भाई, नसरीन बहना, मुश्क को भी खसूसी सलाम, ढेरों दुआएं। अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए इन सबको। डन हो गया भाई, नेक्स्ट गाना जो है ना इन सबको डेडिकेट कर दूंगा। महानूर कह रही है भाई अगर आप बुरा ना माने तो मुश्क से पूछें कि वो नदीम भाई के शो में क्यों नहीं आए। भाई मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई, और वो भी बिजी होंगी इस वजह से शायद नहीं आ रहे। लेकिन चले भाई, मुश्क भी बताए भाई इनको क्यों नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ आपोश से और तमाम सुनने वालों को सलाम दुआ, नाम भी ले दिया उन्होंने। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, जीते रहो। अच्छा जनाब, और दिस इज फारूक, क्या कह रही भैया? जबरदस्त सॉन्ग, डिफरेंट प्लेलिस्ट, क्या कहने। अच्छा जी, बाकी में हाँ, 90s की एक अपनी बात है, अपना मजा वैसे है इन गानों का। और थैंक यू बिगेनिंग, मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। संजीदा जी क्या बात, खुश रहे आप? अच्छा जनाब कह रही है अस्मा, आपने मेरे प्यारे भाई अयास को अपने शो में, अरे भाई बेचारे वो ठीक है भाई, हम यहां जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी किताब में थोड़ी लिखा है कि वहां जाना है। बस वो आ गई, गपशप करनी थी, बातचीत कर ली, आपसे मुलाकात करानी थी और वो हो गया सिलसिला। अब मैं जाऊं या वो जाए एक ही बात है। अच्छा भाई कल का शो अच्छा था, पिक्चर्स भी देखी अस्मा की वॉल पे, अस्मा जी तो बहुत जबरदस्त लग रही थी भाई, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे, अस्मा भी। अच्छा जी चलिए, जरिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई अब जरा मैं शामिल करने जा रहा हूं जुनून का। यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा स्लो है लेकिन बहुत ही आला ट्रैक है। जरा चेक करें आप, बहुत दिनों के बाद प्ले कर रहा हूं, जितने दुखी दिल हैं उन सब लोगों को।

अरे जनाब वाह वाह क्या बात है भैया, बहुत ही तारीफों के मैसेज आ गए हैं। क्यू शीट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पुराने वक्तों के गाने ही अच्छे थे, 90s के। क्या कहते हैं शोभी भाई, 90s के गाने कमाल, पॉप गाने जबरदस्त। अच्छा जनाब, अब वाले भी कुछ कुछ बेहतर है, ज्यादा नहीं है कुछ। हाँ ये बात सही। अच्छा भाई सलाम अयाज भाई, कैसे हैं आप? अयाज आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे आप खुद अच्छे होंगे भाई, कल का शो जबरदस्त था। मेरा नाम रीमा है, आए फिल्म स्टार रीमा, मैं आपका शो रोज सुनती हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, आमीन। रीमा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी बिलावल कह रहे हैं सर मुश्क इस तरह का नाम पहली बार सुना है। चलो सुन लिया ना, शुक्रिया अदा करो मेरा। अच्छा जी इसके अलावा गुलाम नबी सुमरो कह रहे हैं अयाज भाई मामू इकबाल कह रहे हैं मैडम नूर जहां का कोई भी सॉन्ग जो है ना सुना दिया आपकी मेहरबानी होगी। हाय हाय मैडम जी का गाना जो है मैं मंडे वाले दिन पीर वाले दिन मैं ये शो करता हूँ खासतौर पर, तो उसमें मैं तमाम ये मेहंदी हसन के नूर जहां के सबके गाने लगाता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैडम जी का गाना लेकिन तैयबा खातून है उन्होंने गाया और ये 90s में गाया था, चेक करें जरा।

जनाब वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच गए। अयूब भाई कह रहे हैं भाई नूर जो है नूर मुश कल नदीम के शो में आई थी, हम सब ने मना लिया है, मुश जो 100 की रौनक है। हाँ जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, और माँ जबीन क्या बात है, बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और सेहत के साथ रहे भाई। बहुत सारी दुआएं भाई माँ जबीन के लिए, इस्लामाबाद से हमें सुनती है, मैसेज भी करती है। और संजीदा जी बहुत खुश हो रही है, गाने वाने अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा हमारी दोस्त यूके से सुन रही है और पूरी जो है ना अपडेट दे रही है कि इस दफा आई है तो उन्हें कैसा पाकिस्तान लग रहा था, यानी ना महंगा ना सस्ता। पहले हमेशा सस्ता लगता था लेकिन इस दफा ना महंगा सस्ता दरमियान में रहा। गुफरान भाई आ गए, गुफरान भाई अस्सलाम वालेकुम, प्यारे से हमारे इंजीनियर। तो चलो जनाब, और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, गाने पसंद आ रहे हैं इनको। अच्छा जनाब मुश्क ने भी मैसेज कर दिया है और साथ साथ नौरीन तौसीफ भी कह रही है 90s के सॉन्ग बहुत जबरदस्त लगते हैं, गुड सॉन्ग चिक तान ली वाह लाजवाब प्लेलिस्ट। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी है। वैसे एक बात है, मुश्क वो कह रहे पहली दफा सुना है, गाने में भी ये मुश्क का जो है ना वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको जरा सा सुना देता हूँ और इसी के साथ मैसेज भी पढ़ देता हूँ उनका। मुश्क मैसेज कर रही है और कह रही है नदीम के शो में मेरे नाम का सबने मजाक उड़ाया था। हाँ हाय, नाम का मतलब चूहा, नदीम पहले हंसते रहे फिर सबका। अच्छा मेरे ख्याल से गलत पढ़ गया होगा यार, पढ़ने में कुछ गलती हो गई होगी। मेरे नाम का मतलब खुशबू है, फैमिली भी सुन रही थी। हाँ ये तो गलत है वैसे यार, चलो कोई नहीं, बड़ा दिल रखे आप। तो जो लोग कह रहे हैं मुश्क नहीं सुना कभी, तो उनको मैं ये थोड़ा सा जरा ट्रैक सुनाता हूं इसमें।

हाय हाय मुखड़ा, शारिक रूमी क्या बात है जनाब। ये भी 90s में हिट इनके एल्बम होते थे और बड़े अच्छे गाने इन्होंने गाए। अच्छा जनाब, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े प्यारे से फुप्पा ने मुझे कॉल की। थोड़ी देर तक तो मैं पहचान ही नहीं सका कौन है। फुप्पा आपकी आवाज मोबाइल पे कुछ और फोन पे कुछ और, मतलब जो हमारे FM का फोन है उस पर। फुप्पा कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? याद आ रहे वैसे सारे मुझे, बस आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह थोड़े से दिनों में इस पे काम हो रहा है। एक हफ्ते तक इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, फोन का सिलसिला भी, और फिर उसी तरह गपशप किया करेंगे। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं कि सर नाम किसी का भी हो, किसी को भी मजाक उड़ाने का हक नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है उनको गलती हुई होगी, चलो कोई नहीं, पढ़ने में कभी हो जाता है। अच्छा जनाब, और मानूर मुश्क लोग जलते हैं इसलिए। अरे मानूर बस कर दो यार, तुम फौरन फसाद कराने आ जाओ। नहीं किया करो ऐसे, तुम बिल्कुल नहीं किया करो। अयूब आफरीदी, अयाज भाई, गुफरान को सलाम। गुफरान भाई सलाम, अयूब आफरीदी की तरफ से वालेकुम सलाम, सलूट के साथ उनकी तरफ से। गुफरान भाई कैसे हो, थम्स अप, बेहतरीन माशाल्लाह। शक्ल पे वैसे एक बात है, रौनक आ गई। अच्छा जी सर, हमारा अरशद का सॉन्ग, उमेरा, मैंने कहा हमारा, देखा अभी इस तरह मेरे से भी गलती होगी तो इसी तरह नदीम भाई से भी हो सकती है, कोई गलती हो गई हो। वो मेरा अरशद का आज क्यू शीट में नहीं गाना, मैं माजरा चाहूंगा। अभी जो गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यार, ये भी बहुत कमाल ट्रैक है, फ्यूजन बैंड, और जब शफकत भाई थे ना तो वो वाला एल्बम तो बहुत हिट हुआ था, और उसका ये ट्रैक तेरे बिना। इंजॉय करें और मैसेजेस करें 3636 पर।

0: to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के निमार हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकान है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANL वाज़े मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है। मोहल्लों में, सड़कों पर, यूनिवर्सिटी

भाई जनाब, और उस एल्बम में ये गाना था, लेकिन गाना जो हिट हुआ उस एल्बम से वो था ये वाला। अरे बेकरारी क्यों छा रही है, थोड़े थोड़े सुना देता हूँ। और फैसल लतीफ, नो डाउट, मिसेस फारूक बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है।

भाई जनाब वेलकम बैक, और जबरदस्त ये ट्रैक, क्या बात है फैसल लतीफ साहब की। अच्छा वैसे मौसम के लिहाज से ये भी एक उन्होंने ऐसे ही मौसम के लिए जहां ड्रिजलिंग हो रही हो, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो, तो उसके लिए भी उन्होंने एक ट्रैक बनाया था। जरा सा ये सुनाता हूँ और उसके बाद हदीका कियानी को याद करते हैं। फैसल लतीफ साहब किथे रह गए हो तुसी, इनको भी ढूंढते हैं, जरा अपने शो में बुलाते हैं।

क्या ही बात है, जबरदस्त ट्रैक, सारे ही गाने इनके जबरदस्त होते थे, आवाज जो इतनी प्यारी है। अच्छा जना, प्यारी आवाज का जब जिक्र करेंगे, हदीका क्यानी को कैसे भूल सकते हैं भाई, 90s के गाने हो और हदीका क्यानी ना हो,

जनाब क्या बात है, वीजे याद आ गया मुझे, वीडियो जंक्शन और ये गाने जो थे उसमें चला करते थे, और ये गाना ऐसे जाते जाते जरा शुगल के तौर पे।

क्या बात है जनाब, तेरी मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम, मिजाज कैसे? बहुत प्यार से मैसेज कर दिया, नाइस सॉन्ग्स, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल नाम नहीं लिखा। और अफरीदी भाई बहुत शुक्रिया, कह रहे जबरदस्त शो, गुड नाइट, चले जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। और संजीदा गाने पसंद करने का शुक्रिया। मिसेस फारूक क्या कहने, और गयासुद्दीन बलबन खुश रहे आप, और यूके वाली नादिया मलिक खुश रहे आप। बस इसके बाद तशरीफ लाएंगे हमारे प्यारे हर दिल अजीज, कौन भला, अजमल शोभी भाई, जबरदस्त प्रोग्राम लाते हैं वो। अच्छा जी, अयाज अहमद को दें।

0: 100's time check. It's 11 p.m.
1: Cool King. अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी. दिल को है आराम.
0: facebook.com/fm247365
5: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।